0: नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने होस्ट आबिद अली बेग के साथ।
1: माहिरीन ने कुदरत के अजीम तरीन अतियात में एक सेहतमंद जिंदगी को भी ख्याल किया है। मुआलिजीन के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए बड़ी मशक्कत की जरूरत नहीं होती, बस चंद उसूलों पर अमल करना अहम ख्याल किया गया है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के चंद उसूल हैं जिन पर अमल पैरा होना कोई मुश्किल नहीं है। इनमें से चंद एक कुछ इस तरह हैं। दोपहर में आराम। माहिर डॉक्टरों का इस बात पर इत्तेफाक है कि दोपहर में सोना या कैलूला करना एक कसीरुल फायदा अमल है। जनूबी यूरोप में दोपहर में बिस्तर पर दराज होना एक कदीमी रिवायत है। इस मुख्तसर दौरानिये की नींद को पावर नैप कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक कैलूले से ब्लड प्रेशर के अलावा जहनी कुव्वत में इजाफा यकीनी है। पावर नैप या ताकतवर कैलूले का दौरानिया कम से कम 20 से 30 मिनट या ज्यादा से ज्यादा एक घंटा होना चाहिए। चीन में भी पावर नैप का बहुत रिवाज है। बरतानवी साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने सेहतमंद रहने के राज का हल तलाश कर लिया है और ये खालिस मगर देसी या ऑर्गेनिक दूध पीने में मख्फी है। बरतानिया की न्यूकासल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि देसी चारे और खाद पर पले हुए जानवरों का गोश्त और उनसे हासिल होने वाले दूध की गजाइत 50% ज्यादा होती है। देसी चारा खाने वाली गायों के दूध में वाइटामिन और दूसरे अनासिर की मौजूदगी भी आम मयसर दूध से कहीं ज्यादा होती है। जापानी एथलीटों में ये रिवाज है कि वो मश्क के दौरान अपने जिस्म पर रंग बिरंगी पट्टियों को लपेट कर रखते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ऐसी पट्टियों से पहले से मौजूद दर्द में आराम के अलावा किसी नई चोट का इम्कान कम हो जाता है। इन टेपों को केनेजियोलॉजी टेप कहा जाता है। केनेजियोलॉजी से मुराद हरकत और सकनात की साइंस है। जापान के हेल्थ केयर माहिर या कैरोमालिज केंजो कैसे ने इन टेपों को बदन पर लपेटने की तकनीक को दरियाफ्त किया है। टेप का लचकदार और कदरे चिपकने वाले होना जरूरी है। मशहूर खिलाड़ियों में ये टेप इंतहाई मकबूल होती जा रही है क्योंकि उनके इस्तेमाल से उन्हें लगने वाली चोटों में कमी हुई है। आम मामूल की वर्जिश में भी नहायत अहम है और इन पट्टियों का इस्तेमाल इस दौरान भी किया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल बेजर

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अताउल्लाह खान सखेलवी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ।
1: बर्लिन जर्मनी में मुकीम मारूफ अदीबा, नॉवेल और रसाना निगार और शायरा और फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन में हिंदी और उर्दू की लेक्चरर इशरत मुइन सीमा की आवाज में उनकी एक नज्म।
2: नज्म मेरे परचम।